नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को नानक देव को

दिल्ली में शीशगंज रकाब गंडवाला साहेब बंगला साहेब सतो चंडिया साहेबा दी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बुला रे।

त्वप्रसाद तुमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंग रूपा पार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूव्रत भान दस चार चार निधान

भूत बन चार छित छौना सब दूताधारी पौन के आहारी सोभ जंग जानियत है। त्रिण के बछैया धन लोभ के तजैया ते तो कौन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंच की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जित बड़े ज्ञानी तिन्नो जानी पर बखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी गजैया कहे आदस फिरैया ते तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगेरी सीख हत जग आग के भजैया सो जगोर सम मानिए। सूरज सिवैया ताहे कौल की बटाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ दिंदुआ कहत सब कौल नाभ कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब देन जारी रिखी के सनाम के महंत लाहियत है। माधव भवर ओ अटे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जाम दूत कहियत है। मूड रूड पीटत न गुड़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके रखे रहियत है। विश्वपाल जगतकार दीन दयाल वैदिशाल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जोगी जट्टाधारी सती सज बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है। न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठंड न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग देव नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बांदर करत गोर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है। चंद्रमा शीतल न सूर से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी।

जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनों का फेर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच, केते अच वच हो सब पज उड़ जाएंगे। केते नव बीज अच पछ को करेंगे भज, केतक व्रत।

तेज जैसे तेज लीन ताहि तेउ बज सब ताहि मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल मैं डुबत कित आग मैं जरत है कित गंग बाजी कित मदीना मकानी वाजी कित गोदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम मैं गड़त कित सुअप चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान मैं उड़त कित जल मैं रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जाप सी घस हारे चंदन लगाए हारे चोचार बूझ हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब बच हारे पंडित।

परमंगना जन मंगना जातंगत वह खंग पे खंग जो नि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग छयाद अद्वय अविनाशी न जातंग न बातंग।

मंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न मित्र सबूते भविखे भवान अचित्रे नारायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूजंग अभेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्प सर्पत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नियद अद्वय अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग भय निर्विखादंग अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न वर्मंग सदेवंग सदा।

गताकं जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न बर्मं न सर्मं न साके न बर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे कहूं गंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के वेश के धर्म धाम में।

अव्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप द्वय अनासन तुट तेज अनुकुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंशिज गात करता सदीप हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय मित्र पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात पात नहीं।

जोग धरम कई सिमृत शास्त्रत उचरत सो करम ल्यौली याद करम कहु हस्त दान कहु अश्वमेध मुख को बखान कहु करत ब्रह्म विद्या विचार कहु जोग रीत कहु वृद्ध चार कहु करत जच्छ गंधर्व गान कहु धूप दीप कहु अर्घ दान कहु पितृ कर्म कहु वेद रीत कहु नृत्य नाच कहु गान गीत कहु करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदपताज पायतनांत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदप देश देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत।

जय जम पह जो गण जो हजुअंग बैगम बहु मेर पयाल भुवंग तप ताप सर्प जलेर थलंग धन उज दतेन्द्र कुमेर बलंग अन खेद स्वरूप भेद व्यंगन खंड अभूता छेद छे अंगन काल अपाल दयाल सुवंग जेठ टियंग मेर आकाश भुवंग अनखंड मंड प्रचंड नरंग जे रचयंग देव देव परंग सब कीने दीन जमीन जमा जे रचयंग सर्व मकीन मका जे राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भुयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जे जात न पात न मात पितंग जे रचयंग छत्रि छत्र सितंग जे राग न रेख न रोग भणंग जे द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव बद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूप इंद नगिंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपान रिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग किए देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जातन पातन ज्योत जुतंग जे तातन मातन भ्रात सुतंग जे रोग न शोक न भूक भुयंग जे जम पै किन्नर जच जुवंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाजर साधक बांध गणंग भवभूत भवेख भवान तुवंग जय अंडज से तज जे रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भूर मेरा काश निवास चितंग रज रोज एकादेश चंद्र।

रंगन गाद नाद गंगन खेद भेद छेद नरंग जे चार चतुर्देश चक्र फिरंग जय राग न रंग नरेख रुखंग जे सोख न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंगर चे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज प्रतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जमपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध दो मुख ताप तप कई कल्पन लो तब ताप करे रही न कृपा नित पान पर जय फूकट धर्म सफेत जह एक चित कृपा नित को जप है तेउ या भव सागर कूतर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट वृत्ति इम वेद उचारत सार सुते जो वारस के चस के रस।

अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमाद है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के

अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बली रूप राग रंग है, न द्वैक है न भेग, न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है, न चित्र जहन वर्ण है, बेअंत है अनंत तेज जानी है, भूम विज है सदा छिज तेज मानी है, न आद है न व्याद है, अगाध रूप लेखी है, दोख है अदाग है, अक्षय प्रताप पेखी है, न कर्म है न परम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है न तंत्र है, न मंत्र।

न रंग राग रूप है, न रूप रेखरार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा से दसपति तपस्पति वनस्पति जप सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि विषेखिय, बेअंत ब्यंत ब्यंत को करंत पाठ विखिय। अगाध आद देव की अनाद बात मानिए, न जात बात मंत्र मित्र शत्रु संदेह जानिए। सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रहे, तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोद है। त्व प्रसाद रुआमल छंद रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन, आद नाद अगाध पुरख सो धर्म करम प्रवीण। जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरख अपार, हस्त कीट बिखे बसे सब ठौर में निर्धार। जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र, सर्व ठौर बिखे रमे उजे।

रूप रेख नारंग जा को राग रूप नारंग सर्व लायक सर्व खायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी आद देव पाल दीन बंध प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार बरन चहन ना चक्र जा को चक्र चहनाकार जात पात ना गोत्र गाथा रूप रेख ना बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को बरन दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ कर्ता जगत में जय गात भूत भव भवेक।

दुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग सर्व के प्रतपान सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अन काम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्ववर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूमका जले थले मह जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञात

दुर्जन दल दंडन असुर भयंडन दोष निकंदन आदि वृत्ते चरा सुर मारण पति दो धारण नरक निवारण गूढ़ गते। अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंड उदंडे अलख मते। जय जय हो सीमा खासुर मर्दन रम कबर्दन छत्र छिते। आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप तेजंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदुंसन महक मथे। दानो प्रहारन नरक निवारण नदम उदारण उर्द अधे। जय जय हो सीमा खासुर मर्दन रम कबर्दन आदि वृत्ते। डावरूडवंके बबरबवंके भुजाभरंके तेज बरंग लंकुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग।

आसन से चुनिवासन दोष प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाह है सुत सन्ना है अगम था है एक वृते जय जय उसी मय का दुर्मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुनि वंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट मिन

दुर्मर्दन चंड चक्रधन आदि गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर प्रत्यय धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल पा जयंते शत्रु मथंते दुष्ट प्रदाहन गाढ़वते जय जय हो सेवा का सुर मर्दन आद जुगाद अगाद गते खत्रियाण कतन।

दामने प्रकाश अंतरनाशे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रतर खंड बितल तले अष्टायत वाहन बोल निवाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय ओसी मैं घासुर मर्दन आदन आद अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रदा हे अर्दल गा हे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रभा।

दुख दोख रहत जेह नेत नेत सब भेद कहत। कई उच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरन सिवंत कई पलट सूरन।

खंड प्रचंड वारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पद मापद भेद कते व भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज करो कुरुहान की रोज नटार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देवा देव खपे हंग मेवन भेव लख्यो भ्रमस्यो फरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना

काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोधन देह विरक्त अगेह छह है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह है। काहे को डोलत है तुम्हरी सुध सुंदर श्री पद मापत लय है। रोगंते और सोगंते जल जोगंते वो बांध बचावे। शत्रु अनेक चलावत गावत उतन एक न लागन पावे। राखत है अपनो करत।

सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को निंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन कर निंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को पोकत है के वृद्धता की बासी है जो को हूं को जंत्र है के तेज हो को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बाद है के बुद्ध हूं के घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचैया है मान

विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाइये न पार पार वार हूं को पार जब की जत विचार तो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हबसी हलपी देव पूर्वी न पार पावे असत अनाश है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेव नाद अद्व अविनाशी है अंजन भीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं के जोग है धरैया द्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा वध छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के गोल के हंस निश सिंहा रोम हीरा सिंह सन बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पल्लाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सूरसी सुरंगाबाद निके रही झोल के चंदा चंपासी चंदेरे कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी के लाद कमाऊ गढ़ कांसी पूरसी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमासी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन से चंपावती चंद्रमा से चंद्र गिर चांदनी से चंदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगदार बकान से बुलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है भकरी गंधारी गोर कखरी गर्दे जचारी पौन के हारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं विराज जहां जा।

था सो परख एक ओंकार सदगुर प्रसाद सो परख निरंजन हर परख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब ध्यावहे सब ध्यावहे तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ध्यावो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे छोज विडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हौं तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बे अंत बेंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर ध्यावहे हर ध्यावहे तुद जी से जिन जग मह सुख वासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी तिन का भव सब गवासी जिन सेविया जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनख अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तब तापह जपह बेनता तेरे अनेक पड़े बहुसिमृत शास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जीवड़ी अवर ना कोई तू जग जग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तुम करता सचियार मंडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हां पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनों कृपा करह तन नाम रतन पाया गुरमुख लाथा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनू तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिंदु जा अवर ना कोए तू कर कर वेखह जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ भैले निवासा पाणी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मोड़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हाँ जती सती नहीं पड़िया मोरख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख देहुरिया
गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कतै नकाम, मल साध संगत भज केवल नाम, शरण जाम लाग भौ जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहा, जप तप सं

अनाद असंभ ताका मूड़ उचारत बेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड कश भेद ना जानत महादेव कौ कहत सदा सिव निरंकार का छीनत नह भव आप आपनी बुद है जेती बरंत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह पिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्भुज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा है बैठा काहूं सुमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तुत पाता सकल मलेच्छ करो रण घाता जे अस दुजताओ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धियें हैं ताकि काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर मुँह सब होई दुष्ट छा छह सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस दे ताहे उबारा।

कह चौपाई सम सतरह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चर

अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देख तेग जग मैं दऊ चल राख आप मुहे और ना दलय तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब

दोहरा। जब आस प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप दे सब हूँ कहत सुना कब बाच दोहरा। ठाड भयो मैं जोर कर बचन कहा सुर न्याय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उड़ ध्यान है संत। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। तिन बिधियन की कुल बिखै प्रगटे नानक राय। सबसे

धरो अभरीज के देहो वह हम कहो जहाँ विनती कर जोर करो जब आओ कि आओ निदान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरों दोहरा।

सुरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत सुर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुनै अर गावै दुख पाप तह निकट न आवै बिशन भगत किए फल होई आद ब्या छुए सकै न कोई सम सत्रह सहस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद।

रहो हर नाले, हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना, सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, घर तां तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द घनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दियां ए वडियाइया। कह नानक सुन हो संत हो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत

पहला पहला सुझाया कोई सुच मिटाया सुच गैर के और कोई निमटी हो जाए सुचा हो जीविया लगा प्रण स्लो ओती जाय सत्या किस उलगा दो अन्न देवता।